0: वाह यार हूँ ओ पुण्य वाह बता दे बता दे
1: बता तो बता तो राजीव
0: मोनी अकुमी
1: उन्हों वाखाने वाखाने कहे नहीं वीजो
0: वाखान वाखान तो नेरा ने चकानी मकाले लो अपामा सीना नायो
1: मी किन्हीं वा नो वाजीता लोकलिटी आती है वाना वे ही वा माइसी एंड यू से डिस्ट्रिक्ट एरिया कुरुए
0: आना नो वाजीता अवाना कुरुए
1: आहा
0: कहाँ वेन्नो नचुए मोहिवा माहा हु ओले लोहो
1: आ को हिवा सबेरे उन ते शोन
0: आ नलो चांपुआ वा ओ छापेली ओ वानी हिकुना ना माने कान ले ले मेरा मुनी रह रहने वी आना मानी न्यू ए छापेले ने मकाल्ला पामा
1: ऐपा उनो वने आनो किन्हीं सो के रिया कमाशी ओ थला थला वी काशा से वाह कले लिया आना माने ये यंग खाने के हाला को कुमान्यरा
0: आ
1: काचा पहले नो आना वाना काया हो
0: वाले रब वो ना वी एतो को तो को एकुमी
1: एतो को एने एकुमी सिंग आ
0: काओ एनो माओ यह कना मने याओ मना वो ना है माकले लो आया
1: माशी किन्ना वो ना नो एरनो ओहाका लाला कोमो आसु लवी इसे इस तो ओहोलो वो खलाओ आ एठो या मशी एन्ना हकाला लने सिस्टा है
0: वो रे रावो कवा बहे ने मेरु को आना मानो थे ने
1: मश किन्ना चुना वी वा बहा या वकाने वी एता ये यो एन हाला उकुमा एठमाले ले ये यो एहिरोके मोटे पाशा खलावे रा एटेंपु आहुई ला ए हरिंग खाले टेंपु या वी ही हाँ
0: या हेवेले वेलो इचु विला माही कुआला
1: सोते पोला मेलन तावे ना हालो कुमा पाहे अना वाले सेंपरे एही हिजे एतामाले ले
0: ओरे रावन कवा मुनेरे ना निन्यों तो
1: ओ पचेरा किन नाम वहमाना का ओनी चनवा इंजोंपा इमकिन आकोए ने डोनीसिया इमकिन आकोए ने रोनाल्डो एपा ना मारा कथो तंपे ना मुसी ओते ने अंकुरिया ना एटेंपो यला वनाजे हुआ वन
0: वारे रावो नौ तमालेला ओता नौ आपामा
1: बरेकात बरेकात
0: बरेकात